क्या बिन से बाप घने रे पैसी पैरे मुगे कोई तारे वायरी पैसी पैरे मुगे।

यात्रा सफली करनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जिन्हां जिन्हां संगतां वल्लों गुरु महाराज जी दे हजूरी विच भेटावां हाजर होईआं उन्हां संगतां नूं गुरु महाराज जी दे हजूरी विच सिरे भाव दी बख्शीश होवेगी। सिरे भाव लै के गुरु महाराज जी दीआं खुशियां प्राप्त करो जी।

जसपनार बेखनासपना से जगता जाना दिन में दर्श साजो नहीं नानक दिन भगवान बिन भगवान निज दिन माया कारण मारा निदोलत कोटन में नानक को नारायण जह चीत जैसे जलते।

पहे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सीहुती उचारी तनाश्री ए पांचो गाई माल राग कौ सग संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चांड कौ सक उभारा खौ खट औ पहरानद गाए अष्टमाल कौ सक स

नाचत फिरत मुर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है। चंद्रमा ते शीतल न सुर स्थित पत तेज इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्यात ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा रिशन के ते वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कितते असुनी कुमार कितते अंसा अवतार कितते काल बस भय है। पीर और पिकांबर कितते गने न परत एते भूम हित होए के फिर भूम ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तूप जी कपट भेष पोषती अनेक दानी वावत है। शीश को कह भयो मल्ल जो पे काटत अनेक दंड सोत न दंडोत अस डांग अथ तीस को कह भयो रुक जो पे डारो रहे उर्द मुख मान तेना मूड ने हरायो अद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीन एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पट कत जाके कान में खजूरा धसे मुंड छट कत मित्र पुत्र हूँ के शोक सो आग गोचरैया फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सो कह भयो भेड़ जो घसत शीस वृक्षन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जोक सो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सो। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक बाम भू श्राव धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न उजलीन भावना यकीन दिन कह सके तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जोगिया बैरागी बन कब हूँ सन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोगन भ्रमावई कामना अधीन परयो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकार पर शीत काल कुंजर औगत हा अनेक दा पुकार ही कह भयो जो पे काल वत्र लियो कांसी बीज चीर चीर चोरटा गुठारन सो मार ही कह भयो फांसी डार बुढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस।

एक तन घायल सहत है, जाप के कियत जो पायत अजाप देव भूत ना सदीव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर।

जगद्रव तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आप कोर लाव है। अल्लाह अफेक सोई पुरान ओ कुरान हुई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे एक आग देख अनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच केते अच वच हो स पच उड़ जाएंगे। केते नब बीच अच पच को करेंगे भज केते प्रतच हो पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। तेज जीव तेज में तेज जैसे तेज लेन ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। कुकत फिरत किते रोवत मरत किते जल में डुबत किते आग में जरत है। किते गंग वासी किते मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत किते भूम में गड़त किते सुह पे जड़त किते दुख को बरत है। ज्ञान में उड़त किते जल में रहत किते ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हर देवता विरोध हर दानव वटे बोध हर बोधक प्रबोध हर जापसी घास हर चंदन लगाए हर चुआचार पूज हर पाहन चढ़ाए हर लापसी गा हर गोरन मनाए हर मडी मट दीप हर भीतन लगाए हर छापसी गाए हर गंधर्व बजाए हर किन्नर सा

कहूँ चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं

मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम बरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय

जमीन जमा जे रचयं सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखं जय ताप न साप न शोक सुखं जय रोग न शोक न भोग भुयं जय खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात पितं जय रचयं छत्रि छत्रसितं जय राग न रेख न रोग भणं जय द्वैख न दाग न दोख गणं जय अंड हते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नव खंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु बिंद नगेन्द नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नर पाल नृपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नर

अंधूत भूत अछूत मतंगन गात ब्यादा नाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुवंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जछु जंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुरा।

लो तब ताप करे नहीं नेक कृपान त पान पर जय फोकट धर्म सफेद जह एक चेत कृपानिध को जप है देव या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट वृत्ति एम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस।

है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्व सत है। अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानी है। नरंग रंग रूप है नरोग राग रेक है अदोग दा कदक है अभूत ब्रह्म भेक है। न तात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेक सेक भेक है सदीव विश्ववर्ण है। विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्ववर्ण है जिमी जमान के बिखे सदीव करम भरम है। अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में विशेक आन मानिए। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान नेत नेत कै बतावई। न करम में न धर्म में न भरम में बताइए गंज आद देव है कहो सु कैस पाइये। जिमी जमान के बिगे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न

रंग है न मान है न मौत है न साक है न संग है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साहु है न साह को कुमार है न ने है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया।

न सीत है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नरको स्वरूप है न छल है न छिद्र की विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ

अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अभूत फेक है बलि, अरूप राग रंग है, न द्वैग है न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है, न चित्र चिन्ह वर्ण है, बेअंत है अनंत है, अनंत तेज जानिए, भूम बीज है सदा, छिज तेज मानिए, न आद है न व्याद है, अगाध रूप लेखिए, अधोघ है।

न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है, न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कार है, न आद है न गात है न व्याध।

सहज नाम सहंस वर्ण है नेत पूर्ण होत सोद सोद हटे सफे सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गरब पढ़त पढ़त थके महा

भूत भव भवान भूपद आदनाथ अनाथ अगन बाय जले तले मैं सर्व ठौर निवास। देह के नने स्ने अभेह नाथ जीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत। सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयालु देख चक्र चेहर न वर्ण जागो जात पात न भेख।

भूत बाब भावेख भवान प्रमाण देव गंज आदंत नाथ श्रीवत परम पुरभंज धर्म के अन करम जेत की नौन पसार देव देव गंधर्व के

नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सभा कर कोट कष्ट दुरंत, गाय गाय थके गंधर्व नाच बसर पार, सोत सोत थके महासुर पार।

चंडन मुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दाम नीत मंगन दुजा फलंकन फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विपर खंड दुष्ट प्रकर खंड पुष्ट।

गुंगुरु गमंकण सहस्र जमंकण फणियर फुंकारण धरम दुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गति केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगमथा हे एक वृते जय जय हो सीम खासुर मर्दन आद कुमार अकाद वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरू कुमारे अधम बुधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन।

घंट का बिराजे रुणझुण बाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंगो किल सुन लाजे किल बिग बाजे सुखूप राजे मध उरंग दुर्जन दल दजय मंथन रिझे सभ न भजे रूह रणंग जय जय होशी मखा सुर मर्दन चंड चक्रतन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष रोधन क्रूर विदे धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होशी मखा सुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खतरियान खतंगी अभय भंगी आदनंगी अगाध गते।

वी प्रकार खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रकार खण पितल तले अष्टायद बाहन बोलि बाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय हो श्री मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृत्ते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्ध लगा हे दुख हरे गंजन कुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय हो श्री मैं खासुर मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ कहिली ज्योत जतीली धुंध मते अष्टायद चमकण शस्त्र चमकण दामिन दमकण आदि प्रते डुग डुकी दमंगे भागव बंके हुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय हो श्री मखासुर मर्दन आदि जुगाद अनाद मते चछरासुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे बाबान बिहंडन दूच प्रचंडन खंडे।

रक्तासुर मर्दन चंड चक्रदन दान वर्धन बिडाल बदे सरदार विवर खन दुर्जन धर खन तुल मरखन धर्म धुजे धूमराज विदुन संसुण चुन संसुंभन पातन सुंभ मथे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन आद नील अगाध कथे।

सुदन भय अनंत तह कहो जथा मत त्रण तंत। करता करीम कादर कृपाल अद्वैभूतन भय दयाल ताता दुरंत दुख दोख रहत जह नेत नेत सब भेद कहत। कई उच नीच कीनो बनाओ सब बार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूढ़ क्यों न सेवंत ताहे। कई मूढ़ पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पुलट सूरत सिजदा करा।

खंड अखंड प्रचंड वहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पद्मावत भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रूख रुहान की रोज नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे अंग बेव न भेव लख्यो भ्रंस्यो भरमाए। वेद पुराण कतेब कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री पदमा पद पाए। आद अनंत अगाध द्वेक स्वभूत भवेख भवान अभय है अंत विहीन अनात्म आबाद अगाध होगा जिद अच्छय है। लोकन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभ है दीन दयाल दया कल श्रीपद सुंदर श्रीपद मापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोतन देह विरक्त गेह अच्छय है। जान को देता जान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद्मापत लय है।

कर देखन देखन पाप शंभू न भेटन पावे। और की बात कहा कह तू सो सो भेट ही के बट बीच बचावे। जश भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जश भुजंग सब ऐसर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाओं को ने तही ने तह भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हो मिल गायो। भेद कते बन भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जय को अमितोज सब जग छायो। भेद पुराण कतेव कुरान भेद निर्पाण सब है बचहारे। भेद न पाय सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग ते।

आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख कारे दीन दयाला काल बचे बिनांत को अंत के धाम सिधारे। त्वा प्रसाद कपित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रण के साल है दान के देवैया महामान के बटैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है जोध के जितैया विरोध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पावे हिंगुला ही माल जावे गुर कर तेजी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे आरप के आरबी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी गोरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है मरण टाम गेले तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वै तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दल वाली तेरिया क्या मचलत है रोह के रोहले मांग देश के बंगेले वीर बंग से बुंदेले बाब पुंज को मलत है गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीज ने तिपति थे आए दुख देह के दलत है जिन्हें दोहे जायो दिन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल से फलत है देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अवेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उतार है अपार कहियत है हथी की पुकार पल पाछे पहुँचा तथा है जेठ की चिंगार पहले ही सुनियत है कित इंद्र द्वार कितने ब्रह्मा मुख चार कित कृष्णा अवतार कित राम कहियत है कितने ससरासी कित सूरज प्रकाश कित मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है कित महादीन कित व्यास प्रवीन कितने कुमेर कुलीन कित जश कहियत है करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताहित अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पै अपार के बखानी है अद्व अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है जंत्र हूँ न जात जाके बाप हूँ न मायता के पूरन प्रभा के सोचा के अनुमानी है तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है नि जंत्र के जानी है तेज हूँ कदर है के राजसी को सर है के शुद्धता को हर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ का रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रचक गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध का भूत है के अच्छा अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनीमन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के सतरण के साल है के मित्रण को बोगत है के मृदता की बासी है जो कहूँ के जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ के घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचिया है मान को दिवैया है जंजाल को

विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई न पार परावार हो को बार जग की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विद्या पूर्व बिना पार पावे सत्य अनास है देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेवना तत्व अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है कि सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहय महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरिया दुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के हंसनी सी सिंहारो मही रसी हुसनाबाद गंगा कैसी धार चरनी सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा के सी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमासी हिमालय हर हार सी हलपा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे बोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकांसी बिलंदवाद कीरत तिहारी के उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है बखरी कंधारी गोर कखरी गर्दे जाचारी पौन गया हरि तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र दया बिनाथ की

सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके का

निरंकार का छीनत नह भव आप आपनी बुध है जेती बरंत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखान जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक है रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट भय संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस दुजताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताकि काल निकट न है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध घर मुँह सब होई दुष्ट छा छ सकै न कोई एक

लहु उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल्भिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखी अन को छय करता श्री अजुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दोख नाथ सह व्यापत कोई अड़।

दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपी आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मुहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत, स्वर्ग बास रघुबर कर सगरी पुरी समेत। चौपाई जो यह कथा सुने अर गावे, दुख पाप तह निकट न आवे। बिशन भगत किए फल होई, आद ब्याह छुए सकै न कोई। सम सत्रह सैस पचावन, हाड़ वधी प्रथम सुख दावन। तौ प्रसाद

ना ही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटों जस दियां एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तत घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस।

दोहरा नमस्कार श्री खड़ग को करो सहजराय पूर्ण करो ग्रंथ तुम करो सहाय त्रिपंकी छंद श्री अकाल जी की खग खंड बेहंड

है ठीक 8:15 से गुरुद्वारा गोबिंद बाग साहब विखे पहुंच के गुरु साहिबान जी का इतिहास वेख के गुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त करो जी।

मेरे शरीर का कृत कृत बाहो जुग जुग फेर वटाइए गनी बुझताय सचुग्र सतो का त्रम गरथवा त्रै तीर चित का जोर गरथवा द्वापर तपै का